परमं पुल्ले सुतदारस्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनया गुर संगत तह मिलंत जन त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास रखो सरनाई एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास रखो

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसंदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदे साहो जिस पास बहिठिया सोही है

करण करण समरथ जियो पिंड जिन सजया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई

अहनि सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम मूरे अरसों तुरसों तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दैसाह जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साह संगत जी आओ सारे रसना नू करिए जी पवित्र गज के बुला दियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो सतगुरां ने साडे ते अपार किरपा कीती जो सानू सत संगत दियां कड़ियां बख्शिश कीतियां ते सानू आप संगत दे विच लै के आए। महाराज कहिंदे सत संगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणीए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जो कि हर ऐतवार की तरह साढ़े तीन तो लैके पांच बजे तक सतगुरां ने साढ़े ते अपार किरपा करके सानू सिमरन अभ्यास का समा बख्शिश किया। महाराज कहिंदे ने कि साढ़े जीवन दे विच जिन्ने मर्जी वड्डे दुख होण जिन्ने मर्जी वड्डे साढ़े जीवन दे विच अपराध असी कीते होण जिन्नी मर्जी साढ़े जीवन दे विच दलिद्र होवे जदों आपां उस अकाल पुरख का नाम जपना शुरू कर दिंदे आ महाराज कहिंदे इवें ओ सड़ के सवाह हो जांदे जिवें अग लक्कड़ नूं साड़ के सवाह कर दिंदी है। महाराज कहिंदे घोर दुख्यंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट भस्मंग करोत। सो सतगुरां ने साढ़े ते अपार किरपा कीती है जो सानू आप सिमरन करन दे लई आप संगत दे विच लै के आए ने। सारे ही गुरमुख प्यारियां दे चरणां दे विच बेनती है कुछ हदायतां ने जदों आपां सिमरन अभ्यास करना हदायतां ए ने सब तो पहला आपां नेत्र बंद रखने ने। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਗਗਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ

चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन

वर्णत पिन पिन तो हितेती तुमरा लखा न जाय पसारा कि विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पोपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सको मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे उर्ख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दोस्त दोख ते ले हो बचाई।

कि हिंदुस्तान दे सनातनी धर्म वाले मेरे वीर कह रहे हैं कि चार वर्णी संसार च महान है। इस नाम वाले कह रहे ने कि चार जड़े फिरके ने उन्होंने इमाम साफी सिया ते सुन्नी वो महान ने। सनातनी धर्म वाले वीर ब्राह्मण लोग ये गल कह रहे ने कि जे पूजा का स्थान कोई है तो वह बनारस है, मुक्ति का स्थान कोई है तो वह बनारस है। इस्लाम वाले वीर मौलाने ये कह रहे ने कि जे मुक्ति का अल्लाह ताला दे घर तक पहुँच का कोई दरवाजा है, स्थान है तो वह मक्का ते बगदाद है। उधर ब्राह्मण लोग ये गल कह रहे ने कि जो ही कोई धर्म का कोई प्रक्रिया है, कोई क्रिया है तो वह धोती बननी ते तिलक लाउणा ही, गायत्री मंत्र पढ़ना ही धर्म की क्रिया है। दूसरे पासे इस्लाम वाले वीर कह रहे ने कि सुनत करवानी ही, शरा विच रहना ही धर्म की क्रिया है। आपस विच चुगली निंदिया ते एक दूजे नू ठिब्बी लाउण दी जिहड़ी गल आ इह गुरु नानक पातशाह दे जन्म प्रकाश लैण तों पहलां दी चल रही है। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, भाई गुरदास जी लिखते ने खुदी बखील तकबरी खिंचो तान करें तंगाने

सर्वगुण निधानं कीमतना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानीज प्रभ तेरु थानं मन तान तेरु प्राणं एक सूत है जहानं कौन उपमा देव बड़े ते बडानं जाने कौन तेरु पेव अलख अपार देव अकल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार जानक जन नानक भगत धर तुल ब्रह्म संसर एक जी।

0: धन ते धन जन जय कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन पस्यो सी जन्म मरण दूत है रहो।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिया दूसर अवर दूसर आन ना अवर पुरख पव

सब कुल कियो उदार, जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार, हर गुरु नानक जिन परसे ओ तिन सब कुल

आप अपुल ना पुल्लो रतन नाम पार कीम नाम पह कीम ना पवे अमुल्लो जेह गिर पार।

बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रकट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रकट सगल हर

0: सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र

0: अजीतों निवाज है गनी मुल्क राज है
1: मुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है
0: प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: सदावंग स्वरूप है अपेदी अनुप है
0: समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
1: समस्त सलाम है सदैव लकाम है
0: निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अंगाध रूप है अनाद स्वरूप
0: अनंगी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
1: त्रिवर्गं त्रिपादे अगंजे अगादे
0: सुबं सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
1: मुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत
0: के नर्तन प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: मुक्त प्रभा है सदैव सदा है
0: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: मुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है
0: अनुक्त स्वरूप है।

0: जगदेश्वर है,
1: ब्रह्मंड से खलखंड से
0: परते पर है, करुणा कर है,
1: जपा जपे तपा तप है,
0: अक्ता कृत है, मृता मृत है,
1: मृता मृत है, करुणा कृत है,
0: अक्ता कृत है, तरनी त्रित है,
1: ईश्वर है, परमेश्वर है।

0: नामे समस्तुल प्रणासे
1: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
0: गामंग विभूते समस्तुल जरूपे
1: कुकर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी
1: करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजायब विभूते गजायब गनी में
1: हरियम करियम करिमुल रहिम में।

0: सम चियो हमारा सिर्फ कन को सिर्फ गुण सुख दियो सतरन को बल मोहब्बत कियो
1: की जाने थले ब्रेकी पीर
0: चीटी ते कुंचरे सोला सब पर कृपा।

है सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत तुमरी शरण तुम्हारी आशा